0: Lunch break.
1: Lunch break.
2: Lunch break.
1: Lunch break.
3: एक बात मैं अपने दिल में लिए न जाने कब से फिरता हूँ।
4: क्या?
3: कि वो सारे प्रेम पत्र उस मोटी की बजाय अगर तुम मुझे लिखती तो कैसा होता?
4: मैं क्यों लिखूंगी?
3: तो ये सारे कार्ड्स
4: वो तो
3: किसी को प्रेम पत्र लिखना चाहती थी?
4: नहीं, छोड़ो मेरा हाथ।
3: आज चोर पकड़ा गया और मैं हाथ छोड़ दूं?

चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत।

0: राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में।
1: मिफे बिनाय फवने मालिक मोहम्मद जायसी गेले में कमावा पद्मावत के मच्चा रीतिकमा शरफा बारा दहिवित कम के वाहक वर फुला दायरा ग किया दे मी फिल्म का दीपिका पटकोन कुलेफवनी रीतिकमा शाहिकमा मशहूर राजपूत के रानी पद्मावती के रोल शाहिद कपूर कुलेफवनी रस के फान महारावल रतन सिंह के रोल फिल्म के विलन के गुद का फेनिगंदनी दिल्ली सुल्तान सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी मी रोल कुलेफवनी रणवीर सिंह फिल्म का फेनिगंदा वरुगद सपोर्टिंग रोल तक कुलेफवनी अदिति राव हैदरी जिम सार्ब राजा मुराद अदे अनुप्रिया गोयंका फदा तजुर्बाकार फन्नानू

0: जब सारा चित्तौड़ रानी पद्मावती की जय जयकार से गूंज रहा था, दिल्ली में खिलजी हुकूमत की शुरुआत हो चुकी थी। सिपहसालार जलालुद्दीन ने सल्तनत से बगावत कर सुल्ताने हिंद का ताज अपने सर पहन लिया था।
1: सुल्ताने हिंद जलालुद्दीन खिलजी, सुल्ताने हिंद जलालुद्दीन खिलजी।
0: लेकिन उस वक्त भी अलाउद्दीन की नजर हिंद के उस नायाब तख्त पर ही थी।
2: ये तख्त और ताज जितने सुनहरे लगते हैं उतने नोकीले भी हैं। इस तख्त पर बैठकर हमें खुशी भी हो रही है और फिक्र भी, क्योंकि साथ हमारे चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है और सबसे बड़ा मसला तो ये कमबख्त मंगोल है।
3: सुल्तान, इस वक्त उन खूंखार मंगोलों से जंग में जीतना नामुमकिन है। उनके मुकाबले हमारी फौज आधी भी नहीं।
4: लेकिन हमारा हौसला उनसे दुगना है।
3: तो क्या आप लड़ेंगे उन मंगोलों से?
2: जिसके बोझ तले तुम खुद ही दफन हो जाओ।
4: गुस्ताखी माफ हो, लेकिन अब तक वो मिट्टी ही नहीं बनी जो अलाउद्दीन को दफन कर सके।
2: हमें तुम्हारे ये खोखले दावे नहीं, सिर्फ और सिर्फ फतेह चाहिए।
4: हम जाएंगे मंगोलों से लड़ने। सुल्तान, आपका यकीन ही हमारी फतेह है।
5: पद्मावत बलंजे एम ए बोडवे सभा की एक ही गैम मंजर था। संजय लीला बंसाली के इरशाद के दशम खुम में मंजर की विस कुरहाफवा रीति तस्वीर फद फुरिहम मंजरे। फिल्म का दखवा दे तारीही बिया बिनाथका कुलतों के फुरिहम गुलुमा अदि ए जमाना गुलेगो तफरमा कुफवा आगुबोडो हेदुन तकुं बलामी हमीगे इत सते कहरे कुरीगे इंडिया के रस्कम के तिरियक गेंगुस्ते। कुम्मे कुड़कुड़ तफसील का विस्तीफवा अहमियत के सबों राजपूत रस्कमा दिल्ली सुल्तान के दिरियुलों वर फुरिहमे इहुसास कुरेवे। मी इंडिया के सिनेमा का मिहातन उफेदे एम में फुरिहम ए फिल्म वाणी हैं वे। मी फुरिहम उफेदु मट्टका वर बोडु हेदे कुफवे। गैकन का सते का अड्डी करोड़ा सते का नोदी करोड़ इंडियन रुपीस आदि में दुगे बजट को उफेदे मी फिल्म की इंडिया का मिहातन उफेदे एम में अकबर फिल्म तो गे तेरे गही मिने फिल्मे। फिल्म का फेन्ना हंगुरामें के मंजर तक गंडवर तो गे इतरे के फुरी हम कमा आदि आदि खिलाफ गहना तकुं मी बोड़ हेदा के नतीजा वर साफ को फेने।

हम कशवरुं उडुतकाई बिं एकति गणक विफावनिको फहे तिमन रसकलांगे इदेति वकिकुल्ले विकं खाफिरु इमीहुं नुदननी है ये अधि तिमन रसकलांगे दिरे खुम्मे इच्चे फेनुं हिद्देवी में फहे एवरिंग ईमान वनी है ये।

0: दुआ को सारे गे तुका जा सारो वाद आनंद
1: नो
0: प्रॉमिस
1: प्रॉमिस
2: एमी हुम था अबदु एकु गवम बाउ तुवी

0: स्पोर्ट्स बीट, स्पोर्ट्स बीट।
1: नोदी है 1 मेगाहर्ट्ज़ दिव्य एफएम।

0: स्पोर्ट्स बीट, स्पोर्ट्स बीट।
1: नोदी है 1 मेगाहर्ट्ज़ दिव्य एफएम।

0: थी मी मरियम रिफ्का रशीद रिफ्का गैड दिवे ही एफएम दिवे ही नायक
1: नोदी है एक मेगाहर्ट्ज दिवे ही एफएम